0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आज त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप तो हो।